लग जा गले ए लग जा गले दुनिया चले छम छम छम छम छम छम छम ए गण हम पे दिल निसार करता है।

0: मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा।
1: आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो

जीवन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका पिता

काफिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पैरिस की एक रंगी शाम, देखो देखो

0: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?
1: जा मुन्ना।

0: नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: आगे भी तो बोलेगा।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई फुटकी बन के नजर फिर गई तो बंदूक पे हाथ से गिर गई।

0: से वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल वो पान पान, मैं पसीना वो दाल दाल, मैं सुर में वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
1: खुदा की कसम,

थिएटर श्वास रोखून तो भरदार आवाज ऐकत असतो. हे पोलीस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं. बापरे, बड़ा बड़ी छुट्टी के लिए याच आवाजान. सरळ विचारलं त्यानं, ऐ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है आई?

0: अरे गोद में बैठा लो बच्चे का क्या काम है, गोद में बैठा लो बच्चे का क्या।
1: पण मित्रांनो, हाच बॅरिटोन केवढा भावुक होतो जेव्हा वो नीला आसमान सो जाता है, स्वप्नांच्या चंदेरी जगात घेऊन जाणारा हा रुपेरी आवाज, शब्दांना हळुवार गोंजारणारा हा खर्ज, क्या बात है।

मुझे वो जलवा दिखा, फिर से एक दफा मुस्कुरा, फिर से मुझ पे बिजली गिरा। अब तो आ अभी जा, अब तो आ अभी जा अभी जा।

मस्त मस्त तेरी शोखियां, जुल्फ की ये काली बदलियां, ले उड़ेंगी ये आंधियां, दिल मेरा हो गया, दिल मेरा हो गया, हो गया। ओ मेरी बेबी डॉल, हाँ या ना, अरे कुछ तो बोल। ओ मेरी बेबी डॉल, हाँ या ना, अरे कुछ तो बोल। दिल की बात मेरे दिल की बात, मेरे दिल की बात सुन क्या, दिल की बात मेरे दिल की बात, मेरे दिल की बात सुन क्या।

बस वाली गोपाल, तुम्हारे खोए हुए स्वर्ग में वापस नहीं। हाय देवी माता, कुछ और भी मान ली थी। गाओ गोपाल गाओ, कितना जीवन की बसंत बाहर गाओ।

0: वो दिन गए जब तुम्हारा जादू सर पे चढ़कर बोला करता था।
1: जानती हूँ, पर क्या करूँ सरकार, उस हुए जोशी के लड़के ने ना जाने क्या कर दिया है। गोपी तो किसी के परवाह ही नहीं करती।
2: मलैया, जाओ और नरसिंह जोशी से कहो कि अपने बेटे को समझा ले, नहीं तो हम ऐसी कमंद फेंकेंगे जिसमें बाप और बेटे दोनों झगड़े चले आएंगे।
0: जो सरकार।
3: अरे कहाँ भर के यह सुनती नहीं, ओ गोपाल की माँ।
1: क्या बात है जी?
3: हम लुट गए हैं, हमारा सर्वनाश हो गया है और तू पूछती है कि क्या बात है जी।
1: हाय राम, कुछ कहो तो पता चले।
3: अब कहने के लिए रही क्या गया है, ये पिछल पैरा कुंडली इसकी इधर को जाती है और वो उधर को जाता है। मैं ज्योतिषविद का माना हुआ पंडित, इसने मेरे सितारों का हिसाब भी गलत कर दिया है।
1: गोपाल की बात कर रहे हो?
3: और क्या, मैं अपने बाप की बात कर रहा हूँ। तेरे इस लाडले ने हमें कहीं का नहीं रहने दिया और तो सब कुछ किया तो किया, अब एक नाची से इश्क भगाने लगा है।
1: चांद पर मत थूको, मेरा लाल ऐसा नहीं है।
3: बाहर निकलो तो जानो, लोग अंत शंत बातें कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब इस लड़के का हाथ गले तक ही नहीं, सर तक आ पहुंचा। इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। लोग तो अब यहाँ तक कहते हैं कि मैं तुम्हें भी ब्याह कर नहीं लाया, भगा कर लाया हूँ।
1: भगवान, तो फिर क्या करें? लोगों की जबान थोड़े ही पकड़ी जा सकती है।
3: हम उनकी जबान नहीं पकड़ सकते, वो भले हमारी टांग पकड़ ले, पगड़ी उछाल दे, इसने तो जोशी कुल का नाम दबो दिया है। कोई यहाँ तक नहीं टिकता, सबके सब बाप दादा और लकड़ दादा तक पहुँच रहे हैं और ये सब दोस्त तुम्हारा है।
1: मेरा दोस्त कैसे हो सकता है?
3: तुमने तो जल्दी की, अगर 2 घंटे इसे देश से जनती तो इसकी कुंडली ही बदल गई होती, लगन बदल गया होता।
4: स्वतःचा रिसॉर्ट, होमस्टे, ट्रॅव्हल एजन्सी किंवा पर्यटन व्यवसाय सुरू करण्याचं स्वप्न आहे? मग विश्वास बँक घेऊन आली आहे महिलांसाठी पर्यटन व्यवसाय कर्ज योजना। रुपये 15 लाखांपर्यंत कर्ज, 5 ते 7 वर्षांची मुदत आणि विश्वासाची साथ। जरूर संपर्क साधा प्रेमचंद तायडे, 9604178961 आणि गणेश सोमवंशी, 8300016508। महिला उद्योजकांसाठी विश्वासाची साथ।

किसकी जान लोगी, क्या इरादा है? हमको तो बर्बाद किया है, और किसे बर्बाद करोगे? हमको तो बर्बाद किया है,